प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान का गुरजीत सुख मुनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे।